0: किराए हेरा से बड़ा ये लड़ावा रा ही आने बुझते थे वो अखला रा मारा ही नहीं ले रहा नहीं पी ये ने बुझते थे वो बाहर खला हम के जमी हम बखाने मसीन ना वापरा अच्छा परा पाप मामा मुफ़ाये ने ओवानी वो अच्छा थे ने अने उरे ना राज्य मोसंबिके ने फिरा हूँ ओकोमोनी वनला कना हुला ना ओलेलो
1: Siento como en eso el año güey o cati
0: nimbahiwa
1: ajá cati bacani y tú o la bula ca ni la bula